0: जात करू संसार मस्त देगा मारिया याद करू संसार।
1: गुरु प्यारी सत संगत, दो चार मिनट समाप्ति करनी है। जख्मी हो गया सरदार हरी सिंह नलुआ घोड़े की पिठ उत्ते बैठा है। अपने घोड़े ना दो गल्लां करके आख्या, नींद निकल चल घोड़िया किले दे वल, असी पावना नहीं दूजी वार फेरा, गोली लगी है कैल कलेल वाली, जख्मी होया है अज असवार तेरा, वो मेरे बंकिया शहर छबीलिया होए, तू है शया मदाना दा जार मेरा, कादर यार जे लै चल अज डेरे तेरा, कदे ना भुल सी प्यार शेरा, वो तेरा कदे ना भुल सी प्यार शेरा। दगड़ दगड़ करदा घोड़ा जमराव दे किले च वड़ गया, सरदार मां सिंह ने उतारिया घोड़े तो पलंग उत्ते लटाया, वैद नूं बुला के गोलियां ते कढ दित्तियां, पर जख्म बड़ियां चीसां पै रहियां सी, बेसुरत हो जांदा सरदार हरी सिंह नलुआ। अखीर सरदार हरी सिंह नलुए ने मां सिंह दा हाथ घुट के कुछ गल्लां करनियां चाहियां। उन्हें आख्या, मरदा समा आ गया, असी चले जाना, पर दो गल्लां चेते रखियो तुहाडे नाल करनियां ने। एक मेरी शहीदी दी खबर गुप्त रखियो जिन्ना चिर शेरे पंजाब की फौज नहीं आ जाती। दूसरा काम है, जदों मेरे शरीर नूं तुसी लांबू लाउणा, मेरा मूँह काबल कंधार वल रखियो, मैं कदे दुश्मन तो हरना नहीं सिखिया। गुरु प्यारियो, वो 30 अप्रैल 1837 नूं मर्द सूरमा सिख राज दा थम डिग्गा शहीद हो गया। शेरे पंजाब लाहौर विच सी, उहनूं कन्नों कन्नी अजे तक कोई खबर नहीं सी। इत्थे एक शेर बड़ा सोहना लिखदा है, वह कहिंदा, सूरज दे वांगू बेमिसाल जस सूरमे दा, अकल दियां अन्नियां नूं रता वी ना पाया सी, लिख लिख थकिया लाहौरों ना मदद घली, डोगरे ते बामणा ने दगा इउं कमाया सी, जिन्ना चिर आप ना लाहौरों सरकार आई उन्ना चिर फर्ज उहदी लाश ने निभाया सी। उहदी लाश वी किले दी राखी करदी रही। आओ गुरु प्यारी सत संगत, ये मर्द ये जो लिखिया ना सरदार गुरदित सिंह कुंदन ने, वो कहिंदे सरदार हरी सिंह नलुआ लिखदा सी, शेरे पंजाब तू बड़ी सारी सेना अपने कोल मंगवा ली है, मैनू काबल कंधार वेलों वगदियां होईयां हवावां चंगियां नहीं लगदियां, आ सेना वापस भेज, मैनू कुछ ठीक समा नहीं जापदा। पर वो चिट्ठियां गुरु प्यारियो ध्यान सिंह डोगरा अपने कोल लुका लैंदा सी, ते शेरे पंजाब तक पहुँचण नहीं सी दिंदा। जिस दिन उन्हूं पता लगा, धुब्बा मार के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह रोया, उन्हें आख्या, ऐसा मर्द सी जिन्हें कश्मीर जितया पिशावर जितया, आओ काबल कंधार तक सिख राज दे झंडे चलाए। सिख राज दीआं चार स्टेटा सन, मुल्तान सी, कश्मीर सी, लाहौर सी गुरु प्यारियो, ते पिशावर सी, इत्थे शेरे पंजाब दा राज सी। साडे कोल इही कुछ है जिहड़ा दुनिया नूं असीं दस के चाओ नाल संसार नूं दसदे वी साडी इह प्राप्ति सी। आओ गुरु प्यारी सत संगत, इतिहास बड़ा लंबेरा मुकदा नहीं, इह ते समें नूं वेख के समेटिया जांदा है। आओ सतगुरु कृपा करन, साडे सत्कारयोग बजुर्ग सरदार संतोख सिंह जी बैठे ने, बड़े विद्वान ने, सतगुरु उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन, बेअंत उन्हां सीस भेजी। सरदार कुलविंदर सिंह जी जगराओं, समुचे प्रबंधक सरदार महिंगा सिंह जी, तरनजीत सिंह, जिन्हें भी उन्हां दे नाल संजोगी, सारिया वालों बहुत सारा माण भी हाजिर होया है, सारिया का धनवाद किया जाता है। आओ कोटनकोट धनवाद मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज का, तुसी भी असीस दिओ, बड़ा चाओ है इतिहास में खोजण का, इतिहास में सुनाउण का, ये रीझां सतगुरु सदा पूरियां करता रहे, होर मनोबल होर प्यार तुहाडा मिलता रहे। आओ गुरु प्यारी सत संगत, दास गुरजीत सिंह पठल तरन तारण, भाई दविंदर सिंह सुल्तानविंड श्री अमृतसर साहब, ज्ञानी नरेंद्र सिंह जी भुला राई नगर फगवाड़ा कपूरथला, सारी सिख संगत का धनवाद, बख्शो असीस, छे पौड़ियां आनंद साहब के जाप जथे रूप में आप संगत नाल सांझ पाउणी, फिर अरदास होएगी। सारी सिख संगत सब तो पहला गुरु की फतेह नाल सांझ पा के जोग उत्तर दे के धनवादी बना दिओ, कह दिओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे हों आया दूर हूँ चल के मैं तकी तो शरणाए जियो मैं असर की चित मैं

कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक करम प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आए। जिस मन वसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ जीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ देही तत्काल उधारे। निर्मल सोभा।

नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोविड भागी पाए कोट जन्म के किल बिख नासे हर चरणी चिथलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पहे पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पाए सब पावन जन नानक सुख घर आया बिघन बिनासन।

सब कोए कीमत पाए ना कहिया जाए। सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा बीठा होए। कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुनी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवल चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड़े आई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया। तुद विण सिद्धि किने नाम पाईया कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाईया। आखण

हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ह ब सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खड कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावह मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड़ियावर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सच्यार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया। तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहीं,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिश का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहु हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमु बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब।

ताको कर पाहन अनुमानत, महा मूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है देती, बरनत भिन्न भिन्न तोहि तेती। तुमरा लखा न जाए पुसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बाहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनिक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वस कैन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुवराता, किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत पल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार चौपई को कह है। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजय अस्त अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंक तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै, हम एक ना जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं।

कै गहियो तुहारो द्वार बाहि गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तन मन थीवे हरे पौड़ी जिथे तू समर्थ जिथे कोई नाहीं उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाई तेरे छड़ जाहे भौजल बिखम सगा हो गुरसबदी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनु कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर से तीरतया दरगह है पाइय ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मैं उत्तम काढ़िया है विरले केई के महला पंजवा रखे रखनहार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मन होना विसारियन साध जना कै संग भवजल तारियन।

एक नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बुडत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जहै मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाई, दर्शन परसियाय गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदे साहो, जिस पास बैठिया सोही है।

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते पारों पकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गलबात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समां नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तो वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी, पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ़ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदियां बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ये हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरिया अखा नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, पुछी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हां, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हां, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी हुई हां, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

नानक काट परम्परी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गैल्यो कृपाल कृपा निध नानक काट परम्परी।

मीत सुत पाई ताहू ते ले रखी निरारी तावन पावन कूरक मावन ए विद करत औद तन जारी कारम तरम संजम सुच नीमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरथ अस्थावर वोविद जोन परमे अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कतखारी नानक संत चरण चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कतखारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी।

आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंद्यो ना जात विदय मन

उदम कर लागे बो पाती, बिचरत अनक शास्त्र बो चट खटुआ, बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ, पसम लगाए तीरथ बो प्रमते, सुखम दे बंदे बो जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत था टेकर थटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका,

0: रंग रेख पे को कह न सकत के।
1: अचल मूरत अनुपम प्रकाश अमित होज कही जय।
0: ओट इंद्र इंद्रान सहाय सहान गनी जय।
1: त्रि पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत।
0: करम नाम पर नत सुमत।
1: पजांग प्रयात छंद नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग कृपाले।
0: नमस्तन रूपे नमस्तन अनुपे।
1: नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे।
0: नमस्तन अकाये नमस्तन अजाये।
1: नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे।
0: नमस्तन अनामे नमस्तन ठाम।
1: नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग तर्मंग।
0: नमस्तन अनामन नमस्तन अदामन।
1: नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते।
0: नमस्तन अबाये नमस्तन अडाये।
1: नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे।

0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अच्छेदी अपेदी अनामं अकामं
1: समस्तो पराजी समस्त स्थामं
0: तेरा जोर चाचरी छंद चले हैं।

परंग न रेख देश जोर न पेश जाकर रूप रेख न राग नाम कम बहीन पे कदम हूं न जाहे एक मूर्त अनेक दर्शन।

आत्मा अदना जात जाकर जन्म मरण बहीन लोक चौदह के बिके जग जाप जे जाप परम रूप पुनीत मूर्त पूरन पुरख पार काल हीन कला सुचुकत काल पुरख देश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप मीक नुस्त एक पुरख अवधूत अंग हीन अपंग अनातम एक पुरख पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित मधुबार छन त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार अनपो प्रकाश निज ननास राजन

0: भुजंग पर्यात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र मानिए चतुर चक्र दाने
0: चाचरी छंद न सत्रह न मित्र।

किया गंज कर में किया पंज भर में किया दूत बनने के विभूत करने किया शोक बनने के सर्वांग बनने के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपे के चित्रण महीने के अधीने के पाक बेअब है के गैब गैब है के कारण कुनिंद है के रोजी दरिंद है के सर्वन कली है के सर्वन दली है के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साचे के सर्वत्र चाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र भोखे के सर्वत्र देसे के सर्वत्र पेसे के सर्वत्र चाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के आकल लामे के साहेब कलामे हमें सुलसलामे सलीक मुदामे बिलंदुल मकाने जमीनुल जमाने हरीफुल अजीम है रजाए यकीने अजीजुल निवास है गनी मुल्क राज है प्रभुगत प्रभा है से जुगत सुना है समस्तों पर आज है सदा

सुबंसर्वभाग्यसुसर्वानुरागे नरकंपनासे पृथ्वीपरवासे विभुगत स्वरूपे प्रजुगत अनुपे अनुगत स्वरूपे प्रजुगत अनुपे अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अनास है उदास है अतंद है अबंद है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है असंभ है गम है अनिल है अनाद है चर परछन त्रय परसाद सर्वन ख्याता सर्वन ज्ञाता सर्वन प्राणं सर्वन त्राणं सर्वन युक्ता सर्वन मुक्ता अनंगन स्वरूपे अभंगन विभूते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते निर्भंगी

0: रज सन ताम सन सांत रूपे
1: नमो परम तत्तन अतत्तन स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्र अनाद विभूते
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आस आस नमो बांक बंके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
0: एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
1: अबू अजू अनास कास
0: अकंज अपंज अलख अपाख
1: अकाल दयाल अलेख अपेख
0: अनाम अकाम अगा अडा
1: अनाथे परमाते अजोनी अमोनी
0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्मंग अपरमंग गंजे अलेखे
0: भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल पढ़ना में समस्तुल पढ़ना से
1: अगंजुल नामे समस्तुल निवासे
0: कामन बेपूते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते
0: सदा सचदानंद सतरन पढ़ना सी
1: करी मूल कुनिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय बेपूते गजा

0: सात सही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर गर जोग जति के
1: सुरार्दन सुसुदादक सन समूह अनेक मति के
0: सारे देश को देख रहे हो मत कहो न देखत प्राण पति के
1: श्री भगवान की कृपाऊ ते एक रति बिन एक रति के
0: तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे
1: को तुरंग को रंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे
0: के भू बली बिदन्यावत शीश न जात बिचारे
1: इते पै तो कहां पै पूपत अंध को नंगी पाए पधारे
0: फिरे सब देश दिशान को बाजट डोल मृदंग नगारे
1: गूंजत गुण क जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
0: भविक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपत श्री भगवान पजे बिना

0: ती जतदार सबे सुबिचार हजार के देखे।
1: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखे।
0: सिपा दुरंत दुबास साज सुना दुर्जान दलेंगे।
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे।
0: वासन माते मतंगन मान मलेंगे।
1: श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे।
0: वीर पार बड़े बड़ियार बेचारे सार की तार बचैया।
1: तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया।
0: गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं जग चार लवैया।
1: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक दिवैया।
0: साचर भूत भविक भवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल में तल में पली पल में सब थाप थपेंगे।
0: प्रतापन बाढ़ जैत दुन पापन के बो पुंज खपेंगे।
1: सात समूह पर सन फिरे जग सत्र सबे अवलोक चपेंगे।
0: मानव इंद्र गजिंद नराधप जोन त्रिलोक को राज करेंगे।
1: कोट स्नान का जात कदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: राम महेश सर्व सन सचिपत अंत फसे जम फास।

0: काल करे सो क्यों मनोविसारिये
1: मनो क्यों विसारे एव दाता जे अगर मैं अहां पहुंचावे
0: उसनो कह पोह न सकी जिसनो अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनोविसारिये
1: जैसी अगर उधर मैं तैसी बार माया
0: माया अगन सब इक्को जे ही करते खेल रचाया
1: जाति स्पाना था जमिया परवार पला पाया
0: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया
1: ए माया जित हर विसरे मोगजे पौ दूजा लाया
0: हे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया
1: हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए
0: मूल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए
1: ऐसा सदगुर जे मिले तिसनो सिर सौपिए विचो आप जाए
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन

0: बारद नी मन गारे
1: पशु नग नाग नरातम सर्व समय सब को प्रतपारे
0: पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारे
1: खंड प्रचंड पहाड़न पूर्ण प्रेम की प्रीत समारे
0: पार न पाए सके पद्मापद पेद कते बपेद उचारे कीट पतंग कुरंग पुजंगम पूत पविक भवान बनाए
1: देव देव कपाय अम्बेव न पेव लगे ओ प्रम से ओ परमाए
0: वेद पुराण कतेव कुना न सेव थके कर हाथ न आए आद अनंत अगाद अद्वैत सो पूत पविक भवान अपे है लोगन के करता हरता जल मैथल मै परता प्रभवे हैं
1: सुंदर श्री पद्मापते हैं
0: काम न क्रोध न लोग न मोह न रोग न शोक न पोग न पे हैं जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे हैं काहे को डोलत है तुम्हारी शुद्ध सुंदर श्री पद्मा पद ले रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते भो पात बचावे राखत है अपनो कर देकर पाप सबूना पेटन पावे
1: बात कहां कहतो सो सो पेटी के पट बीच बचावे
0: जच पुजंग सो दानव देव अपेव तमे सब ही करत्यावे पाय सके नहीं पार प्रबाहु को नेथी नेथ है वेद बतावे नारद से चतुरानर से रुमनारक से सब हु मिल गायो पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सुनंतन त्यायो वेद पुराण कतेब कुरान अपेद निरपान सबे पछारे

0: मेरी अब बेनती सुन लीजै
1: और न मांगत हां तुम ते कै चाहत हो चित में सोई की जय
0: शासन सोवत हीरान पीतर जूझ मरो तो साच पतीजै
1: संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है वर दीजै
0: सवैया दे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहु ना डरो
1: न डरो वर सो जब जाय लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो
0: हर सिखो अपने ही मन को हे लाल चौगुण तो उचरो
1: जब आप की औद निदान बने तहिरन में तब जूझ मरो
0: तन जियो तह को जग में मुक्ति हर चित में

0: गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तो ठाकुर तुम जियो पिंड सब तेरी रा, तुम मात पिता हम बारिक, तुमरी कृपा में कोई न जान। सगल समग्री तुमरे

मट्टी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही मट्टी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही।

मैं असरखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो सो कहो टल गुर सेविए एहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हंद साहो